अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: अजय का भी मिजाज है।
1: कितने रहो यार।
0: वाह, ये दोनों छोटे भाई हमारे बड़े प्यारे हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी जी की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी जी की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।